0: है।
1: वो यो
0: अच्छा अच्छा संगमाल का एक लोगों संगान को वाह
2: बांगने रहना सेंग्रुमा ओके बांगने तो नहीं
0: करे करन करन कोई सोपा
3: hati
4: inu mane banyu panas
0: lah kuwi men jaluke panas kok
2: najan wadon wirung mau wirung to krungok kan
0: jarene langsung.
2: Oh langsung.
0: Ya. Dadi baleni nadyan wadon.
1: Ha iya ngono.
0: Oh ngono ya.
1: Jane pe ngono.